रुदे दताए तुआ देन नीला उरम ए मयोह लाला दे दताए अन्या तुआ देन का तुआ वे ताओ लकू अगे।